वर्ल्ड कप 2026 को अवसर में सीजी टीवी ने लिया 3+3 वर्ष को वारंटी साथ ही 36,000 सम्म को कैशबैक सजिलो 0% ईएमआई को सुविधा नागरिकता भएपुग्छ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप सीजी टीवी खेल संगे भरोसा संगे

0: मोबाइल नम्बर 98420 82776।
1: नयाँ नेपालमा नयाँ नाम निशान टेलर, स्थान खाजारी 1 बुद्धचोक बाटो दूरसञ्चार जाने बाटो।